0: बिगड़े हुए सवार साडे काज तुसी डरते खड़े सवाली रखियो लाज तुसी
1: बिगड़े हुए सवार साडे

कीमत कहण ना जाए। नानक गुरमुख हर गुण रवै गुण में रह समाए। पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पै दे भगत कार। हर पाठ लगा दिखाई बो बो बिद भात कर। कोई बूझा बूझना हरा अंतर विवेक कर। सो बूझै इह विवेक दिस बुझाए आप। हर जन नानक कहै विचारा गुरमुख हर सत हर श्लोक महला तीजा। प्रथा ऐसा कि महापुरख बोल दे साजी सगल जहान। गुरमुख सो भो कर अपना आप पछाण है। गुर प्रसाद जीवत मर ता मनी ते मन मान। जन को मन की प्रतीत नाई से क्या कथ ज्ञान है। महला तीजा गुरमुख चित न लायो अंत दुख पोताए। अंदरों बहारो अंधे आ सुध न काई पाए। पंडित तेने की बरकते सब जगत खाए। जो रते हर नाए जिन गुर कै शब्द सुलाए। अर सिर समाए पंडित दूजा पाए बरकत न हो वही। ना तन पलै पाए पड़ थके संतोख न आयो। अण दिन जलते वाय कोख पकार न चुकी। न संसा बिचों जाए नानक ना विहोणिया। मय काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मिल प्यारे। मिल पंथ दसाई जो हर दसै मेत सोह बल जाय। गुर साजी तिन कौ करी गुण साजी तिन स्यों करी। हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा नित सेव। हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुके जे वेद पड़ा जुग चौर। त्रैगुण माया मूल है विच हुमे नाम विसार। पंडित भूले दूजा लगे माया गया व्यापार। अंतर दिसना भूख्या मूर्ख भुखिया मुयंगवार। सतगुर सेविया सुख पाया सचा शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सचा नाम पिया। नानक नाम रते सहज रजे जिना हर रख्या उड़ताओर। महला तीजा मनमुख हर नाम न सेविया दुख लगा बहुता आए। अंतर ज्ञान अंधेर है सुध न काई पाए। मन हठ सहज न बीजियो भुखा के अग्गै खाए। नाम दान विसारिया दूजा लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए। पौड़ी हर सुना हर जस गावै खरी सुहावनी। जो मन तन मुख हर बोलै सा हर पावनी। जो गुरमुख जखै साध शास्त्र बतावनी। गुण गावै प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जसो वै आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा अस्ति सिर ज्यों अंकस है अरण ज्यों सिर दे। मन तने आ गै राख गै भी सेव करे। गुरमुख आपने वारी है सब राज सृष्टि काले। नानक गुरमुख बुझिया जाय आप नदर करे। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। नानक कुल उदार है अपना दरगा पावे मान। पौड़ गुरमुख सखिया सिख गुरु में लाइया। एक सेवक गुरु पास एक गुरकार है लाइया। जिना गुर प्यारा मन छेत तना भाव गुरु दे वाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मिता पुता भाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जी वाइया। श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनिया ज्ञानिया। दलैवर करम कमाए जम दरबद्या मारिया। फिर विष्टा माए पचाए महला तीजा। नानक सतगुर सेवे अपना सेजन सचे प्रवान। अड़कै नाय समाए रहे चूका आवन जान। पौड़ी तन संपै माया संची अंते दुखदाय। कर मंदर मैल सवारी है के साथ न जाए। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै कामना आई। जन लाव चित हर नाम सिव अंतो सिखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन करमै ना ना पाईऐ पूरा कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी तां गुरमुख मेल मिलाए। महला पहला एक दज्जै एक दब्बी है। एक न कुत्ते खाए एक पानी विच उष्टी है। एक भी फिर हसन पाए नानक ए उन्हां जापे कितै जाए समाए। पौड़ी तिनका खादा पैदा माया सब पवित है। जो नाम हर राते तिनके कर मंदिर महल सराए सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोले हर हर राम नाम हर साते जिनके पोते पुन से गुरमुख सिख गुरु पै जाते। श्लोक महला तीजा नानक ना वो कुथे आ खलत पलत सब जाए। जब तब संजम सब हिर लिया मूठी दूजा पाए। जमदर बदै मारी है बहुती मिले सजाए। महला तीजा संतान नाल वैर कमाव दे दुष्टा नाल मोह प्यार। अग्गे पिछे सुख नहीं मर जमै वारो वार। तिस ना कदै ना बुझे दुबदाय को वार।
ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣਿਆ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾ ਦੇ ਆਤ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਵ ਦੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣਿਤ ਗਾਵ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਹੋਇਆ ਪਾਰਸ ਹੋਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਵਲਾ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਬਖਸੈ ਸੁ ਪਵੈ ਥਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਲ ਕੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮੁਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਆਏ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮੈ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਾ ਪਉ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਭਾ ਸੂਜੀ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਜਾਏ ਪੌੜੀ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤੇ ਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤੇ ਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤੇ ਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਣਤੇ ਆ ਸਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ

0: कृपा करके सुनो प्रभु, सब जग में वरसै में हूँ जो हर दासन की उस्तत है। सहर की वडियाई अरे अपनी वडियाई भावई जन का जयकार कराई। सो हर नाम सो हर जन नाम ते आयदा, हर हर जन एक समान जन नानक कर का दास है। हर पैज रखो भगवान महला चौथा, नानक प्रीत लाए तिन साचै तिस बिन रहण न जाई। सतगुरु मिले था पूरा पाए गया, हर रस रसन रसाई पौड़ी रहण दिन प्रभात। तू ऐ गावना जीजन सरबत, नाम तेरा त्यावना तू दाता दातार तेरा दिता खावना। भक्त जना कै संग पाप गवावना, जन नानक सदबले हारै बलबल जावना। श्लोक महला चौथा, अंतर ज्ञान पही मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे कपे कपाई सतगुरु का पाना चेतन आवस अपने स्वाय फिराई। कृपा करे जे अपनी तां नानक शब्द समाई। महला चौथा, मनमुख माया मोह व्यापे दूजा पाए, मनुआ थिर नाहे अंदर जल त्रै दिन राति होमे कपे कपाए। अंतर लो मांग बारा तिन कै निकट ना कोई जाए। आप दुखी सख आप दुखी सो कबू न पावे, जन्म रह मर जाए। नानक बख्श ले प्रभु साचा, जय गुर चरणी छत लाहे पौड़ी। संत भगत प्रवान जो प्रपाया, सही विचखण जंत जिनी हर त्याया। अमृत नाम निदान भोजन खाया, संत जना की धूर मस्तक लाया। नानक पै पुनीत हर तीर्थ नाया। श्लोक महला चौथा, गुरमुख अंतर सांत है, मान तन नाम समाये। नाम उचित वै नाम पड़ै, नाम रह लिवलाए। नाम उदार्थ पाया चिंता गई बुलाए, सतगुर मिल गया नाम पुजै तिस न भुख सब जाए। नानक नामे रतया नाम भुलै पाए। महला चौथा, सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छुट गया। उस पिछै वजै फकड़ी मोका लागै भया, उस अरल बरल मोह निकलै नित झगू सुटदा मऊआ। क्या होवै किसै ही दै कीतै, जा तुर किरत उसदा एहो जिहा पया। जिथे ओ जाए तिथे ओ झूठा कूड़ बोलै किसे ना भावै। वेखो भाई वड्याई अर संतो स्वामी अपने की, जैसा कोई करै तैसा कोई पावै। यो ब्रह्म विचार होवै दर साचा, अगो दे जन नानक आख सुनावै पौड़ी। गुर सच्चा पदा थे रखवालै गुर दते, पूर्ण होई आस गुर चरणी मन रते। गुर कृपाल बेअंत अवगुण सब हते, गुरु अपनी कृपा धार अपने कर लते। नानक सदबले हार जिस गुर के गुण इते। श्लोक महला पहला, ताकिर जाय लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे। हुक्म हुआ असल कदे ना होए, हुक्म हुआ हासिल तदे होए निबड़िया हंडे जी कमां दे। महला दूजा, नक हाथ कसम हाथ किरत तके दे, जा दाने ता खाने नानका सच हे पौड़ी। सबे गलाई आप थाट बहाली, उन्हें आपे रचन रचाया पे काली। उन्हें आपे जनते उपाय आपत पाली, उन दास रखे कंठ लाई नदर निहाली। उन नानक भगता सदाए आनंद पाऊ दूजा जाली। उन श्लोक माला तीजा, ए मन हर जी त्याय तू, एक मन एक चित पाए। हर की आस दस दा वडियाईया, दे ना पछोताए। हौ हर कै सतबले हार, न जित सेविया सुख पाए। नानक गुरमुख मिल रह होमै सब जलाए। महला तीजा, आपे सेवा लायण आपे बख्श करे, सब ना कमा प्यो आप है आपे सार करे। नानक नाम तिहायण तिन निज कर वास है, जुग जुग सोभा होए पौड़ी। तू करण कारण समर्थ है करते, मैं तुझ बिना वरना कोई। तुद आपे सिष्ट सिरजी आपे फणंगोई, सब एको शब्द वर्तदा जो करै सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो। धन धन धन गुर सोई सुध राग सोरठ बाणी, भगत कबीर जी की कर पहला एक ओंकार। सत गुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुरक मुए सिर नाए। ओले जारे ओले गाडे तेरी गत दू ना पाए। मन रे संसारियां दगेहरा, चौदस पसर वै जम जेवर रहाओ। कबत पड़े पड़ कबता मुए, कपड़ के दारा जाई। जटा तार तार जोगी मुए, तेरी गत इन्हें ना पाई। द्रब संच संच राजे मुए, गढ़ दे कंचन भारी। बेद पड़े पड़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबैब गूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई, कै उपदेश कबीरा। जब जरिए तब हुए भस्म, तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन के है बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रोहा जो मदमा की त्यो सठोर रस जोर जोर तन की अमृति बार लियो लियो करिया भूत रहन क्यों दिया देहरी लो बरी नार संग पही आगे सजन सुहेला मर कट लो सब लोक टंब भयो आगे अंसे अकेला कैद कबीर सनोरे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया बंदाया ज्यो नलनी प्रम सुआ वेद पुराण सब मत सुन कै करई क्रम किया सा काल ग्रस्त सब लोग सयाने उठ पंडित पैचलै निराशा मन रे सरयो नय कै काजा पजो न रघुपत कर राजा रहा बन खंड जाय जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया नदी बेदी सबदी मोनी जम के पट लिखाया भगत नारदी हृदन आई काच कूस तन दीना राग रागनी डिम्ब हुए बैठा उन हर पै क्या लेना परयो काल सब जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी को कबीर जन पय खालसे प्रेम भक्त जहे जानी कर दूजा दुई दुई लोचन पेखा हों हर बिन और न देखा नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहण न जाई हमरा परम प्या पो भागा जब राम नाम चित लागा रहा बाजीगर डंक बजाई सब खलकत मासे आई बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई जाको गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रया समाई गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी कह कबीर रंग राता मिल्यो जग जीवन दाता जाके निगम दूत के ठाटा समुंद बिलोण को माटा ताकि हो बिलोवण हारी क्यों मिटै गो छास तुहारी चेरी तू राम ना करस पतारा जग जीवन प्राण दार रहाओ तेरे गले तौक पग बेरी तू घर कर रमैया फेरी तू अजुना चेतस चेरी तू जम बपरी है हेरी प्रभ करण करावना हारी क्या चेरी हाथ बेचारे सोई सोई जागी जित लाई तित लागी चेरी तैस मत कहां ते पाई जाते परम की लीक मिटाई सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाजना जी आ जाई जो मिले ता काल अकाई सा जीवन पुलो कहाई मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निर्ज निरखत गत व्यवहारा रोहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन दैनो जगत ने हारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जनदाता पाया सुदिया न जाई खाया छोड़िया जाना मूका औरन पै जाना चूका जो जीवन मरना जाने सो पंच सैर सुगमा न कबीरा सोतन पाया हर पेट त्या मिटाया क्या पढ़िया क्या गुणिया क्या वेद पुराणा सुनिया पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिले सोई हर का नाम न जपस गवारा क्या सोचा बारंबारा रहाऊ अंधियारे दीपक चही है एक बस्तिया गोचर लही है बस्तिया गोचर पाई घट दीप करिया समाय कै कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना भतीजा ना भतीजा तो क्या की जाए हिरदय कपट मुख ज्ञानी झूठा कह बिलोस पानी काया मान जस कौन गुना जो घट पीत रह मलना रोहाव लौकी अड़सर तीर्थ नाए को रापण तो ना जाई कह कबीर बिचारी पव सागर पर तार मुरारी सूरठ एक ओंकार सत गुर प्रसाद बहु प्रपंच कर परतन लिया वै सुधारा पयान लुटावै मन मेरे भूले कपटना की जाय अंतन बेरा तेरे जी पै ली जाय रहाओ चिन चिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी युग कोई पानी ना पावै कैद कबीर कोई नहीं तेरा हिरदय राम की न जपै सवेरा संतो मन पवन सुख बनया किच जोग प्राप्त गणया रहाओ गुर दिखलाए मोरी जित मिर्ग पड़ता है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनंत बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटे उबा करिया क्या कबीर को कबीर जन जाने आ जो जाने तो मन माने आ राग सूरठ भूखै भगत न कीजै यह माला अपने ली जा हो मांगो संत नरे ना मैं ना ही किसी का देना माधो कैसी बना तुम संगे अपना देव ता ले वो मंगे रहाओ दुए सिर मांगो चूना पाओ कियो संगलु नाद सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जवाले खाट मांगो चौपाई सरहाना वर्तु लाई उपर को मांगो खीदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाहे गीता लबो एक नाउ तेरा मैं फबो कह कबीर मन माने आ मन माने आ तो हर जाने आ राग सोरठ बाणी भगत नाम देव जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा नाद समाय लोरे सदगुर पेटले देवा रोहब जहा चिल मिल कार दसंता ता अनहित शब्द बात जनता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसाद दे जानी रतन कमल कोठरी चमकार बिजल तही नेरै नाही दूर निज आत्म रह भरपूर जा अनहत सूर जारा ता दीपक जलै संसारा गुर प्रसाद जानिया जनदामा सह समानिया कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दै हो मोको बेडी दे बताई हो री बाई बेडी देन ना जाए देख बेडी रियो समाय हमारा बेडी प्राणे धारा रहाओ बेटी प्रीत मजूरी मांगा जो को चाण छवावे हो लो कुटुंब सबोते तोरै तो अपन बेटी आवै हो ऐसो बेटी वंदना साको सब अंतर सब ठाई हो गूंगे महामृत रस चाख्या पूछै कहण ना जाई हो बेटी के गुण सुंदरी बाई जलद बांध त्रु थाप्यो हो नामिक स्वामी सी बहोरी लंक पपीखण आप्यो हो सोरठ कर तीजा अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कनहर गाजै बादल बिन बरखा हुई जो तत बिचारै कोई मोको मिलो राम सने जे मिलिय देह सुदेही रोआव मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन बरोया निज भाओ पया परम भागा गुर पूछे मन पति आगा जल भीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेलिया मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की ओंकार सत गुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं उदद जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए परम ऐसा जैसा मानिया हो ना तैसा रुहाओ निरपतेक सिंघासन सोया सुपने पया पिखारी अछात राज बिछरत दुख पाया सुगत पई हमारी राज भयंग प्रसंग जैसे अब कश मरम जनाया निक कटक जैसे पूल परे अब कहते कहण ना आया सरबे कहने कै स्वामी सब कट पोग वैसोई कह रविदास हाथ पै नीर सहज वे सोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम्हें आराधे माधवे जानता हूं जैसी तैसी अब कहा करोग ऐसी रहाव मीन पकर फांक्यो वर काट्यो रांद कियो बो बानी खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरियो पानी अपन बापै नाही किसी को पावन को नहीं राजा मोह पटल सब जगत ब्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाटी अब एक आसन कही है जा कारण हम तुम्हें आराधे सो दुख अजू सही है दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अभिवेक राजेंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख है न बिचारो राजा राम को रस जेह रस अनरस बिसर जाही रोहाव जानया जान पे हम बावर सोच सोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत आन अचरियत अनकच समझ न पर अपरमाया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया सुख सागर सुत्र चिंतामण काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नव निद कर तल ताके हर हर हर न जप रसना वर सब त्याग बचन रचना रोहा नाना ज्ञान पुराण वेद बिद चौथी सखर मई व्यास विचार रहे परमार्थ राम नाम सर नाही सह समाधु पद रहत फुन बड़ा पागले लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे रहाव जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीर्थ तो हम जाति साचे प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी जा जा जाओ ताहा तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और न देवा तुमरे भजन कटे जम फांसा भगत हित गावे रविदासा जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसा बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए गो पसम की ढेरी, उचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पाद कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद कै रविदास चमारा, चमरट्टा गांठ ना जन्नई, लोग गठावै पनही, रहा आर नहीं जे तोपो, नहीं रामबी ठाउ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगुचा, ओम बिन गांठ है जाय पहुचा, रविदास जपै राम नामा, मुझ जम से नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नैनो नीर बह तन खीना, पे किस दुवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरैब क्या करे पराणी, राम राय हुए बैद बनवारी, अपने संतां लिओ उबारी, रोहाव माथे पीर शरीर जलने है, कर कर जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पही, वाका औखद नाही, हर का नाम अमृत जल निर्मल, औखद जग सारा, गुर प्रसाद कै जन भीखण पाव मुख द्वारा, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हिरदारा, कीर्तन छपै छपाया, हर गुण कहते कहण न जाय, जैसे गूंगे की मिठे आई, रोहाव रसना रमत सुनत सुख श्रवणा, चेत चेते सुख होई, को पीखण दुए नैन संतोखे, जहां देखा ता सोई, तनासरी महला पहला, कर पहला चुप देखो ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभउ, निरवैर अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद, जीव डरत है अपना, कैसों करी पुकार, दुख विसारण सेविया, सदा सदा दातार, साहेब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, रहाव अंडन साहेब सेवी, अंत छडाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए, दयाल तेरा नाम तरा, सदगुर बाण जाओ, रहाओ सरबंग साचाए, कह तू जाना ही कोए, ताकि सेवा सो करे, जाकु नदर करे, तुद बाज प्यारे, केवरा सा वड्याई, दे जित नाम तेरा लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिसे आग्या प्यारे जाए कहा, रहाओ सेवी साहब अपना वना जाचो कोए, नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुक चुक होए, साहेब तेरे ना विटो, बिंद बिंद चुक चुक होए, रहाओ तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत महत ना जाना, नानक बिन मैं तसरे वो जाके जी, प्राणांद जीवना विचार देख, केते के दिना रहाओ, सास मास सब जीव तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक सहरे कहते हैं सच्चे प्रभद गारा, जे तू किसे न दे मेरे साहिबा, क्या को कड्डा गैना, नानक बिन मैं सो कुछ पाईया, पुरब लिखे का देना, नाम कसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाणा, जम दुबार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना, जब लग दुनिया रही है, नानक किश सुनिया किश कहिया, पाल रहे अमरैण ना पाया, जीव ते अमर रही है, तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, क्यों सिमरी सिवराने जाए, तपै हयाओ जीड़ा बिदलाए, सिरज सवार साचा सोए, तिस विसरिया चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मलो मेरी माए, रोहा वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोकपति ने ना पत होए, ता पत रह राख जा सोए, जा देखा ता रह समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जे कुकरै कीता क्या होए, जिसनो बख्शा साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्यामो देसा गुण नहीं नाल, जैसी न दे करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोए, तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रह लिवलाए, आत्मा परात्मा को करे, अंतर की दुबदा अंतर मरै, अंगुर प्रसादी पाया जाए, खालस्यो चित लागै, फिर काल ना खाए, रहाउ सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याए, पुत्र कलत्र विच अंगत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै, जिसका जियो तस्या गै तरै, साहिब पावै सो प्रवान, सो सेवक दरगा पावै मान, सतगुर की मूर्त हिरदै वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करै, सो सेवक जमते कै सा डरै, पणत नानक करै विचार, साची बाणी सुन तरै प्यार, ताको पावे मुख द्वार, जप तप सब इहो शब्द है सार, तनासरी महला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जय तन बानी बिसर जाए, जो पक्का रोगी बिललाए। बहुता बोलन चखण एवन बोला जाने, सब सोए रोहाओ। जिन कन कीते कीना, जिन जेहवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए। वाजा पौन आखे सब जाए, जैता मोह प्रीत सुवाद, सबा कलख दागा दाग, दाग दोस मुह चलिया लाए। दरगा बैसन नाही जाए, करम बिलाय आखण तिर नाउ, जित लग तिर ना होर नहीं थाउ, जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सरबदा तार। तनासरी मरला पहला, चोर सलाए चीत ना भीजै, जे बदी करै ता तसु न छीजै। चोर की हमा भरै ना कोय, चोर किया चंगा क्योय। सुन मन अंधे कुत्ते कुड़ियार, बिन बोले बुझिया सचियार रहा। चोर सवाले चोर सयाना, खोटे का मुल एक दुगाना। जे साथ रखिए दीजे रलाए, जा परखिए खोटा हो जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, आपी जा पे खावे। जे वड़े आया जे वड़े आईया पे खाए, जे ही सुरत ते है रह जाए। जे सो कूड़िया कूड़ कबाड़, भावे सभ्या को संसार, तुझ भावे दी प्रवाण। नानक जाने जान सुजान, तनासरी महला पहला। काया कागद मन मन प्रवाणा, सिर के लेख ना पड़े ए आना। दरगा घड़िया तीने लेख, खोटा काम नया वै वेख। नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोए रोहाव। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए। जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत बचाने, गुरु प्रसाद को जाने काजी। सो जो उल्टी करे, गुरु प्रसाद जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार, आप तरह सगले कुल तार। दान संबंध सोई दिल धोवै, मुसलमान सोई मल खोवै। पढ़िया बुझा सो प्रवान, जिस सिर दरगाह का निशान। तनासरी महला पहला, करती जाय को ओंकार। सत गुरु प्रसाद। काल नाही जोग नाही, नाही सतका ढब। था नष्ट जग भ्रष्ट होए, डूबता इव जग। कल मह राम नाम सार, अखी ता मीटै नाक पकड़ै। ठगण को संसार रहाओ, आंट से ती नाक पकड़ै। बूझते सूझते तिन लो, मगर पाछै कछ न सूझै। इहो पद में लो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेच पाख्या गई। सृष्ट सब एक वर्ण हुई, धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सुधे, करे वेद अभ्यास। बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास। तनासरी महला पहला, आरती एक ओंकार। सत गुर प्रसाद। गगन मै थाल, रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, तू मिले आंदलो पवन छवरु करे। सगल बंदराय फुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई पवखंड ना तेरी आरती। अनता शब्द वाजंत भेरी रोहाओ, सहस्तव नैन नन नैन है तुय। को सह समूरत नायक तुय, सहस्व पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस्तव गंध विचलत मोहे। समय जोत जोत है सोए, तिसके चांदन समय चांदन होए। गुरसा की जोत प्रगट होए, जोत सुभावै सवारती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित, मन वंदनो मोहियाई प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारं को, होए जाते तेरा ना वासा। तनासरी महला तीजा, कर दूजा चौप दे इक ओंकार। सतगुर प्रसाद। यो तन अखुट नानक खुटै ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सदबल जाए, गुर कृपा ते हर मन वसाई। सेतन वंत हर नाम ले बुलाए, गुर पूरा हर तन प्रगास्या। हर कृपा ते वसै मन आए रहा। औ गुण काट गुण हृदय समाए, पूरा गुर कै सह सुपाए। पूरे गुर की साचे बाणी, सुख मन अंतर सह समानी। एक चरजन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाए। नाम मूल कर पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। साम्य वसै प्रभ एको सोइंग्र, मति कट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान सुजाणिया, सहज जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा। हर नाम तन निर्मलिया त्य पारा, गुर कै शब्द परे पिंडारा। नाम धन बिन होर सब एक जान, माया मोहि जलै भी महान। गुरमुख रस चाख्या कोई, ते सदा आनंद होवै दिन राति। पूरा भाग प्राप्त होए रोहाओ, सब दीपक वर्तै त्यो लोए। जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हमें मल तो। हे साचे भगत सदा सुख होए। ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਆਖਿਆ ਸੁ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗ, ਤਿਸ ਸਦਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਹਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੂਹੀ ਬੁਲਾਏ, ਅਣਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸਾਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਜਸ ਦਾਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਜੀ ਜੰਦ ਜਨੈ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਹਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨ ਪਾਵੈ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਰੁਹਾਉ ਯੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਉੜਾ। ਧਨ ਪਿਰੋਵੇ ਸਾਂਤ ਸਿਗਰ ਆਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਸੋਇਓ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੂਲੋ ਭੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਗ ਮੈਲਾ ਮੈਲੋ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਲੋ ਭਾਏ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਸਪਰਜ ਵਿਗੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਟਾ ਖਾਏ ਆਪਣੀ ਪਦ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਪਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਰੋਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸਰਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਸਾਚੇ ਰਾਸ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰ, ਸੋ ਧਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲਾਏ, ਉਤਮ ਬਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਤਿਨ ਬੁਲ ਜਾਉ, ਤਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਨਾਉ। ਸਾਚੋ ਸਾ ਸੰਭਾਲਿਓ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨੇ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨ ਮੈ ਲਗਵਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਰੋਹਾ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਣ ਬੁਝਾਏ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਸਾਚ ਮੈਲ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਾਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹੁਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕਰ ਹਾਏ। ਕਿਸਨ ਕਹੀਏ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮਰੈ ਤਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਮਾਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਬੂਝ ਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸੈ ਦੇਵ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਗਸੈ ਹਰ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨੇ ਆਈ, ਰੋਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਤਾਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਕਧਾਰਾ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਰਜ ਵਾਲਣ ਹਾਰਾ, ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਕੋਈ। ਅਚਰਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ। ਹੁਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਅਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਦਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾ ਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੈ ਅੰਧ ਗਾ ਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਰੁਹਾਉ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਲ, ਭਵ ਜਲ ਡੁੱਬੈ ਨਾ ਉਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਾਚ ਰਤੇ, ਅਨਸ ਬੈਰਾਵ ਚੋ ਜੋਗੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਸਿਰ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ, ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਚ ਲਾਏ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੇਜਾ। ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਰੁਹਾਵ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਵਿਮਾਨ, ਕਾ ਡੁੱਬੈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਆਵਿਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਸਾ ਲਾਈ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਏ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆ ਗੈ ਰਾਗ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੰਪੀ ਖਕ ਪੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾਰ ਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁੰਬਲਿਆਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਟੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਨਾ ਕਾਏ ਕੋ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰੁਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਣ ਕੋ, ਅਬ ਕਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਪਨਾਇ, ਸਿੰਹ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੰਡਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੁੱਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾ ਗਿਆ। ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਪ ਦੇ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਵਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮੇ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ ਪਾਪੀ ਪਾਤਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਅਮਤਾਰੀ ਰੁਆਓ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚਾ ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ਜੋ ਕੰਚਨ ਬੈ ਸੁੰਤਰ ਤਾਇਓ ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਟਤ ਉਤਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਉਤਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਅਵਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮੰਗਾਦ ਬੋਧ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ਜਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਚ ਸਵਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਾਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਤਨਗਾ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪੋ ਭਾਗੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਾਵ ਸੰਤ ਜਨਾ ਗੀ ਜਾਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਸੰਗੀ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤੈਸੇ ਬੁਲਕ ਬੁਲਾਗੀ ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ ਨਾਨ ਨਿਕ ਕੀਰੇ ਤੁਮ ਵੜ ਪੁਰਖ ਵਡਾਗੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਾਇਆ ਪਾਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੋ ਹਮ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਹਰ ਕਥਾ ਕਥਾ ਗੀਤ ਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਗਤਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਸ ਕਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਪਲ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਨੀ ਰੁਹਾਓ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ਤਿਨਕੀ ਧੂਰ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਹਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਸਫਲੇ ਬਿਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਤਿਖਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ ਜਿਨਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜਿਨਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੜੇ ਉੱਚੇ ਤਿਨ ਹਰ ਜਪਿਓ ਜਪਾਨੀ ਤਿਨ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮ ਅੰਦਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲਾਂ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮਲਾ ਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਰੁਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬਿਗਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਧੋ ਮਤ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ ਹਰ ਸੰਤ ਚਲੈ ਹਰ ਨਾਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾ ਲਈ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣ ਜਪ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮੇਲੋ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗਰਾਲੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲਲਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਿਮਖਾਤੀ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਇਕ ਰਾਤੀ ਜੋ ਬਿਨ ਅਮਲ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮਰ ਜਾਤੀ ਰੁਹਾਉ ਤੁਮ ਹਰ ਸਰਵਰ ਅਤਿਆਗਾ ਹਮ ਲਹਿ ਨ ਸਕੈ ਅੰਤ ਮਾਤੀ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਮਿੱਤਰ ਜਾਨੋ ਆਪਣ ਗਾਤੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਬਨੀਅਤ ਸੋਭਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਉਤਮ ਪਾਤੀ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਆਬ ਨਾਵੈ ਭਾਤੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਭਗਾਤੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਲਯੁਗ ਕਾ ਧਰਮ ਕਹੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਕੇਵ ਛੂਟਾਮ ਛੁਟਕਾ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਬੇੜੀ ਹਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਤਰੈ ਤਰਾ ਕੀ ਹਰ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ ਹਮਾ ਗੀ ਭਗਤ ਏਕਾ ਕੀ ਰੁਹਾਵ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਜਪਿਓ ਹਰ ਬਚਨਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਛੂਟੀ ਜਮਕੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰ ਜਪਿਓ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਦਿਨੀਰ ਸੂਰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬੁਜਾਨੀ ਸੇਵ ਚਰਿਓ ਚੰਦ ਚੰਦਾ ਕੀ ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵੱਡ ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾ ਕੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਰਾਰ ਰਮੋ ਰਮ ਮਨੋ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਪਰਮ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੀਨੇ ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ ਹਮ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਸ਼ਟ ਹਰ ਸੰਗ ਹਰੀ ਸਤਸੰਗ ਪਏ ਹਰ ਕੰਚਨ ਚੰਦਨ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ ਨਵ ਛੇ ਖੱਟ ਬੋਲੈ ਮੁਖਿਆ ਗਿਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਵ ਨ ਪਤੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੋ ਇਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭੀਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਹੋ ਹਰ ਲਹੋ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਵ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਥੇ ਆਈ ਅਣ ਦਰਗਾਹ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਜਪ ਮਨ ਨਾਮ ਹਰੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਸੁਖੀ ਹਰ ਜਸ ਊਚ ਸਭਨਾ ਤੇ ਉਪਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਚੜਾਈ ਰੁਹਾਵ हर कृपा निदकीनी गुर भगत हर दीनी तब हर्षों प्रीत बने आई बहुत चिंत विसारी हर नाम उतारी नानक कर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भौजल पारी उतारी मन बचन दै ते आए हर होए संतुष्ट इव भण हर नाम मुरारी मन जपे है हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदानंद हुए दिन राति हर कीरत कर बनवारी रोहाओ हर हर करे दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जिन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आय परे है शरण तुम्हारी तना श्री महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेती सकोट मुंजन सब चाहे हर जियो तेरु नाम गुरु प्रसाद को विड़ला पावै जिन को लिलाट लिखिया तुरपाओ जप मन रामै नाम अर जस उत्तम काम जोगावै सुनै तेरा जस स्वामी हो तिन कै सद बलिहार जाउ रहाउ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देव सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दी जय नानक हर सिमरन का है चाउ तना श्री महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गावै सुनया तिनकार थाई पावै जिन सतगुर की आ गया सत सत करमानी बोलो भाई हर कीरत हर पवजल तीरथ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रोआव आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज विडानी जन नानक आ मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग हुआ हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूर्क सर्ब सुख दाता हर जाके वासा काम तेना सोया सर त्याई है मेरे जीड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मन जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुखी उजल हुई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहा जार सिमरन भया तो पद गत कीनी उठपागी हर जपना जिन नानक गुर हिमत दीनी जप हर पवजल तरना तना श्री महला चौथा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता साहब क्या जान कोई रोहा साचा साहब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिया साहा दूजा ना ही कोए सबना विच तू वरतदा साहा सब तुझा त्याग दिन रात सब तुझी थव मंग दे मेरे साह तू सबना करे एक दात सब को तुझी विच है मेरे साहा तुझते बाहर कोई ना है सब जीत रे तू सब सदा मेरे साहा सब तुझी माए समाए सबना की तू आसै प्यारे सब तुझे त्याग है मेरे साहा सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझा त्याव है मेरे साहा जो पावै त्यो रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पद साह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपद एक ओंकार सत गुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वशल निरंकारे कोट पराध मिटे किन भीतर जां गुरमुख नाम समारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दूतारे रोहाव तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहेंद्र बारे सरबजिया के दात स्वामी कर कृपा लियो उबारे तेरा वर्णन जाप रूप न लखिया तेरी कुदरत कौन बेचारे जल थल महिल रविया सर्ब ठाई यगम रूप गिर तारे कीरत करे सगल जन तेरी तू बनासी पुरख मनारे जो भावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है भवरा इन मार्ग निक सना पायो अब मन एक सुमो कीना मरण जावे सदी संगे सदगुरु सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ पर वस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा देख कुटंब लो मोहयो प्राणी माया को लपटाना यत्र चुकर लेनु अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जान उसदा दुहेला को नानक गुरे अब जायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मैं नाम बंधन ते छुटकाए मन ते बिसर सकलो तंदा गुर की चरणी लाए सत्संग चिंत बिरानी छाडी अंबद मोह मन बासन दे कर गढ़हा गाडी रोहा ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किस कै बैराई ब्रह्म सार बसार पीतर सतगुर ते सोजी पाई सब को मीत हम अपन के नाम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरोहा ता मेल कियो मेरा राजन बिन सो टीठा अमृत बूठा सब दिल गो गुर मीठ चल थिल मही लसर बने वासी नानक मैया डीठा तनासरी महला पंजवां जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन सिवे आए मानंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगा सदा सुख मन मैं सदगुर पूरा पायो रुहाओ गुण निधान दे पीतर वसया ता दुख परम पो भागा पई प्राप्त वस्या गोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा कौ मैं रोग मिटे कृपा ते जमते पे विभाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पाणी कौ नानक जन जमते काढे तिस गुर कै कुरबाणी तना श्री महला पंजवां जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगुण सुजानी तिने सुनिया दुख सुख मेरा तो बिदनी की खटानी जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी रोहा अमृत नाम निर्मोल के हीरा गुरदीनो मंतानी डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण हो त्रिभुतान्यो जो बीच हम तुम गच होते इतनी की बात बिलानी अलंकार मिल थैली हुई है ताकते कनक बखानी प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा बाजे न तबानी को नानक ने चल कर बादे यो गुर कीयो बंदानी तनासरी महला पंजवा वड़े वड़े राजन अर भुवन ताकि त्रसन्ना बूझी लपट रहे माया रंग माथे लोचन कछु न सूझी मेख्या मैं के नहीं तृप्त न पाए जो पाव की दिन नहीं तरापै बिन रकाया कहाई रोहा दिन दिन करत भोजन बो बंजन ताकि मिट न भूखा उदम करे स्वान की न्याय चारै कुंटा कुखा काम कामी बो नारी पार ग्रह जो न चुके दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लोभ मैं सूकै हर हर नाम अपार अमूला अमृत एक निदाना सूख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तना श्री मोहला पंजवा लवै न लागण को है कछुऐ जाको फिर यो तावै जाको गुर दीनो यो अमृत सी को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदिया ताकि चितना बसा रहाओ मोल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बंदन सको उस्तत ताकि कीमत कहण न जाए काल न मिल्यो सेव न मिल्यो मिल्यो वाए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरै कमानो मनता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला योत पोत नानक संग रविया जो माता माल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया मा उदयान अंधकार में है जिन सीता मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल को बिंदिया सर्ब थोकी जिसे हमारी चिंद रहा जा कै सिमरन सर्ब निदाना मान मात पत पूरी नाम लैत कोट अगना से बाचा भगत बाचा सब धूरी सर्ब न मनोरथ जे को चाहे सेवा एक निदाना पार ब्रह्म परम पर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल सातमा सुख पाया संत संगर ओला हर तन संचन हर नाम पूजन यो नानक की नो चोला तनासरी महला पंजवा जे करनी होवै शर्मिंदा यह कमानी रीत संत के निंदा सागत की पूजा ऐसे दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरा ही तर चंदोरी बनहर पातरे यह त्योहारो बीत रहो चंद्र लेप होत देह को सुख गर्त पसम संगीत अमृत संग नाही रचयावत बिखट गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग में पवित्र पुनीत जात आकार जन्म पदार्थ काच बादर जीत जन्म जन्म के किले विक दुख भाग है गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत सा संग इन दुख ते निकस्यो नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पका पी सो संत आग्या गुण गोबिंद जस गाई सास सास मन नाम सुमार यो विश्राम निद पाय तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा त्याई रोहाव हमरी कृपा ते मोह मान छूट बिन सजाए परमाई अनंद रूप रवियो सम दे जद कत पेख जाय तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतित पावन गोसाए कोड़ सुख आनंद राज पाए मुख ते निमख बुलाई जावता भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाए नाम जप तृष्णा सब बुझी है नानक तृप्तिया काई इतना श्री महला पंजवा जिनकी ने वस अपने त्रागुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या जंत विचारा प्रभ की उठ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाय बिखे ब्या तब हूटो रहाओ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ਨਾ ਬੁਖਤੇ ਬਖੀਐ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਡੀਠੀਐ ਸਿ ਟਕੋਰੀ ਪਾਏ ਪੁੱਲਾ ਵਹਿਮ ਮਨ ਸਭ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਮੀਠੀ ਮਾਏ ਬਾਪੂ ਤੇ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ ਉਨ ਘਰ ਘਰ ਮੇਲੋ ਦੂਆ ਕਿਸ ਹੀ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸ ਹੀ ਪੈ ਸਗਲੇ ਲੜ ਲੜ ਮੂਆ ਹੰਬਲੇ ਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨਿਉ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਜੀ ਭਾਏ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਨ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹੰਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ ਜੇ ਵਾਇਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਿਰਵੰਤ ਨ ਕਿਨੀ ਲਹੀਐ ਰਹਾਉ ਕੂੜ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਨਿਕ ਬਿਦੀ ਸਮਝਾਵੋ ਹਮ ਗਿਆਨ ਅਲਪਮਤ ਥੂਰੀ ਤੁਮੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਰਖਾਓ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮੇ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸ ਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ ਕਹੋ ਨਾ ਭੇਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲੈ ਮੀਠੇ ਬੈਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੈ ਸਭ ਤਾਕੋ ਬਿਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ ਰਹਾਉ ਜਾਪਤਾ ਭ੍ਰਮਣ ਬਸੁਦਾ ਕਰ ਉਰਦ ਤਾਪ ਲੈ ਗੈਨ ਬਿਦ ਨਾ ਪਤੀਆਨੋ ਠਾਕੁਰ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕਰ ਜੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਲਕ ਹਰ ਜਸ ਤਿੰਨ ਪਾਇਓ ਜਸ ਕਿਰਪੈਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਜਨ ਰਹਿਣ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੈ ਅਸਤਰ ਕਰੇ ਨੈ ਚਲਿਓ ਮਣੁਆ ਬਹੁ ਨਕ ਤੂੰ ਧਾਵੈ ਹੈ ਕੁਵੈ ਸਵਮਰਾਮੀ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀਓ ਹੀਓ ਦੇਓ ਅਰਪੋ ਆਪਣੋ ਚੀਤ ਰਾਵ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾਨ ਸੁ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਸੰਤ ਸੰਪਾਖਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਜਾਗੈ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਆਲਸ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੇ ਆਲਾ ਮੰਗ ਦਾਨ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਲੀਨੇ ਸੰਤਿਓ ਬਾਲ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਕੀ ਚਿਤ ਵੈ ਬੁਰਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੀ ਚਿਤ ਵੈ ਬੁਰਿਆਈ ਤਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਮਾਰ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਨਿੰਦਕ ਭਾਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮ ਤੂੰ ਆਹੀ ਮੂਹੇ ਬਾਹੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਮੰਜਾਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਉਹ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਅਪਾਰ ਨਿੰਦਕਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਬ ਹਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਚਤਾਰਿਆ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀ ਏਖਨ ਭੀਤਰ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਗੋਸ਼ਟ ਭਈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਰਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਗੀ ਸਗਲੇ ਤਾਰਿਆ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਿਆ ਚਰਨ ਰੇਣ ਬਾਂਚਨਿਤ ਨਾਨਕ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉ ਹੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਜਿਨ ਦੁੱਖਾ ਕਟਿਆ ਕੀਤ ਰਹਾ ਹਾਥ ਰਾਖਿਆ ਪਨਾ ਕਰ ਬਿਰਥਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ਨਿੰਦ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈ ਕੀ ਨੇ ਜਨ ਕਾ ਆਪ ਸਹਾਇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਖ ਲਈਏ ਕੰਠ ਲਾਏ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਖਦ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਮੋਹੇ ਅਤੋਰੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਿਤ ਪਾਦ ਰਹਾਉ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਦੁਤੀਆ ਪਾਹੁ ਨੇ ਵਾਰ ਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਸਰਨ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਮੇਰਵਾਣ ਅਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਕੁਵਾ ਰਾਧੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਰਾਗ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਅਮ ਤੇ ਕਿਛੋ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੋ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰਿਓ ਚਨਿਸ਼ ਦੁਖ ਸੁਖ ਊਚ ਨੀਚ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤ੍ਰਾਵਸ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਮਨ ਬਸ ਨਾ ਰਚ ਬਿਖੈ ਬਿਆਦ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਗ ਮਾਂ ਸਾਧ ਜੀ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਸਦਾ ਹਰ ਨੇਰਾ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖਿਆ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਦ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬੇਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਣ ਸੰਜਮ ਕਿਚ ਨਾ ਸੂਜੈ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਉ ਆਦਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜਨਮ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥਾ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਈ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਇ ਅੰਦਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨਕਾ ਰਸ ਪੂੰਜੀਏਕ ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੀ ਜਨ ਸਾਧੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆਣ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹੇ ਧਾਰੀ ਓਡ ਗੋਪਾਲ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਰਹਾਉ सुर्ग मृत पयाल पु मंडल सगल व्यापे माये जीव धारण सगल कुल तारण सब हर नाम ते आए। सुर्ग मृत पयाल पु मंडल सगल व्यापे माये जीव धारण सब कुल तारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाइया पाया सर्ब निदाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवां कर दूजा चुप दे एक ओंकार सत गुर प्रसाद छोड़ जाहे से करे पराल कामना या वैसे जंजाल संग न चाले तिन संहित जो बैराई से मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ खोए गवारा रहाओ सास धर्म नहीं भावै डीठा झूठ मोस झूठ तो स्यो अच्यो मीठा दात प्यारे विसरा दाता राजाने नाही मरण विचारा वस्त पराई कोठ रोवे कर्म धर्म सगलाई खोवै हुकम न बूझे आवण जाने पाप करे ता पछो ताणे जो तुझ भाव है सो प्रवान तेरे भाणे नु कुरबान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहे प्र मेरा तनासरी महला पंजवा मैं मसकीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रुजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताकि आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार
1: साध गावे गुण इतन रंकार रहाव साब की साध की सोबारत मसकीनी संत वडाई हर जस चीनी आनंद संतन के भक्त गोविंद सुख संतन के बिनसी चिंद जहां सौ संतन हो वहीं कतर तं हर जस गावह नाद कवित सौ सबा आनंद विश्राम अनुसंग सुपा जिस मस्तक राम दुई कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवै संतां धूत नासरी महला पंजवा सो कत डरै जे खसम समार डर डर पचे मन मुख विचार रहाउ सिर उपर मात पिता को देव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल सात संगत हो वत परगास जीयन का दाता पूरन सब ठाई कोट कलेस मिटै हर नाई जन्म मरण सगला दुख नास गुरमुख जाके मन तन बस जिसनो आप लय लड़ लाए दरगह मिलै त सही जाए सही भगत जे सचे पाने जाम काल ते भय निकाणे साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कह विचार कट कट अंतर सगले आधार नानक जाचा संतरे नार तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बाहर तेरा परवासा तू जन कह है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन कहो प्रभ अपने का तान जो तू करह करावै स्वामी सा मसलत परवान रहाओ पथ परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण सरण नानक दास हर हर संति हे बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रति पाए कंठ लाए गुर रखे संसार सागर में जलन न दीने किन न दुत्र पखे जिनका मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो तना श्री महला पंजवा जहां जहां पेखो तहां हजूर दूर कतहु न जाई रब रहया सर्वत्र मह मन सदा तिहाई ईतु उतनी बिछड़ा सो संगी गनिया बिन सजाए जो निमिख मह सो अल्प सुख पनिया रहा प्रतपाला अप्याओ दे काश उन ना हुई सा सा संभालता मेरा प्रभ सोई अशाल अछेद अपार प्रभ उच्चा जाका रूप जाप जाप कर आनंद जन आचर जे रूप सा मत देहु दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगा दान प्रभ रेन पग सदा तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तिन बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन निह चल राज कमाओ ਤੁਮ ਕਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰਾਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਅਪਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ, ਕਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜਹ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜੇ। ਅਸਥਿਰ ਰਹੋ ਡੋਲੋ ਮਤ ਕਬਹੂ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਧਾਰ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ, ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਈ, ਅਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਛੇਵਾਂ। ਏਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨੋ ਹਮਾਰੇ।

दुतिया दुर्मत दूर कर, गोर सेवा करनी, गोर सेवा करनी, राम रतन तज पाये पर।

सच्ची तेरी सी सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पाशा नानक सच ते आए ने सच जो मर जमे सो कच निकच।

कुदत सुनिए कुदत पौ सुख सार कुदत पाताल आकाशी कुदरत सर्वे कुदरत वेद प्राण कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जन सिरंग कुदरत जी जहां कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरतों कादर।

जल थल जिया प्रिया लो आया कर आया कार कोई जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सा नानक भगता भुख सला।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे पया, धर्मी धर्म करे का भावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत न जाने छड़ बहे करबा, सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, पत प्रमाण पिछे पाइए तां नानक तोले।

0: कैला।
1: श्याम कह सतंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सस्मरे करे प्रभु राम नाम देवा मैं सूर, नायले प्रात जाहे नानक तो मुखम त्रिपाहे।

का स्कंडी ऐसा दही रह समा चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस्क्रीन अखिए जे लिखे वरत सोई भला।

हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधुले को गोरे अंचल दीजे जन नानक चले मिलंथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गोरे अंचल दीजे जन नानक चले मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हो अमृत वेले तो सजे दवाना दियां हाजरियां भरदियां रब्बी बाणी दे कीर्तन आसा की वार दे कीर्तन होए। अरदास उपरंत पावन मुखवाक आप जी ने सरवण कीता। समा है मुखवाक दी विचार दा। इहदे नाल ही नगर पुआदड़ा दी संगत वल्लों अते भाई बलदेव सिंह अटवाल परिवार वल्लों गुरद्वारा साहिब विखे कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ ने, जिन्हां दे भोग कल ऐतवार नूं पैणगे। सो आप समूह संगत नूं सद्दा पत्र है नगर निवासियां वल्लों। सो आप जी ने हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने। कल नूं धन गुरु अर्जन साहिब महाराज शहीदां दे सरताज पिता जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा अते भगत कबीर साहब जी दा जिहड़ा है वह प्रकाश दिहाड़ा भी है। सो आप संगतां ने समय सिर पहुँच के रब्बी बाणी दे अरजा संकीर्तन गुर इतिहास सरवण करना जी। सो आईया हुई संगतां दा धन्नवाद। आओ शब्द दी विचार दे नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दवाना दी हाजरियां भर रहे। सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां दी बड़ी बख्शिश हुई है जो आप सब गुरदेव दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृतमई बाणी दे नाल आसा की वार दे कीर्तन दे रूप विच सांझ बना रहे सी। उपरंत अरदास जोदड़ी हुई इलाका निवासियां नगर निवासियां वालों अते अटवाल परिवार वालों सतगुर दे चरण परसदियां श्री अखंड पाठ साहब चल रहे ने। तो आओ साध संगत हुण समा है गुरु शब्द दी विचार दा। आवाजे दे रूप दे विच मुखवाक दे रूप विच जो आप जी ने शब्द सरवण कीता है तिस दी विचार नूं आरंभण तों पहलां फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द दा सरलेख है जैतसरी महला चौथा। जैसरी राग विच चौथे शरीर गुरु रामदास साहब दा इह वाक है। घर पहला पहले घर विच इनू गाउणा है। चौ पदे दा अर्थ हुंदा है चार पदयां वाला शब्द। बाणी विच दो पदे ते पदे, एक तुका दो तुकी ते तुकी। सो इह शब्दां दा आम तौर ते सरलेख सानूं मिल जांदा है। दो पदे दा मतलब है जिहड़ा दो पदयां वाला है। ते तुकी दा मतलब है जिहदियां तीन तुकां ने, एक तुकी एक तुक वाला, दो तुकी दो तुकां वाला। इदां ही दो पदे दो पदयां वाला ते इह है चौ पदे जाणी के चार पदयां वाला शब्द। रहाओ वाली पंक्ति नूं पासे कर दईए ते बाकी शब्द जिहड़ा है उह चार पदयां दा है। धन गुरु रामदास साहब महाराज ने बख्शिश कीती, मंगल उचारण कीता, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओ खुदा ओ परमेश्वर ओ अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिद इको एक निरंकार हस्ती जिहदी सारी कार है ते जिहड़ा सारी कुदरत विच एक रस व्याप रहा है। एक रस दा अर्थ हुंदा है जिहनूं आपां कंटीन्यूटी कहिंदे आ, लगातार निरंतरता जिहदे विच कोई फर्क नहीं है। जिवें बंदे नूं साह लगातार आउंदे ने इदां ही रब अपनी कुदरत विच लगातार वरत रहा। जिवें बंदे नूं हवा दी लोड़ निरंतर पैंदी है इसे तरीके नाल रब जिहड़ा है उह वी बिना अंतर तो बिना फर्क तो कंटीन्यू अपने कार्ज भी कर रहा है ते अपनी कुदरत विच भी वरत रहा है। तो महाराज ने आख्या उह इको है, कोई दूजा नहीं, कोई तीजा नहीं, कोई चौथा नहीं, इको ही है जिहदी सारी कार है। एक ओंकार सदीवी होंद वाला है, सदा रहने वाला है। तो गुरु की कृपा द्वारा उहदी जिहड़ी सोझी है उहदा जिहड़ा अनुभव है वह मनुख नूं हुंदा है। तो महाराज गुरु रामदास रहाओ वाली पंक्ति विच अपने मन नूं मुखातब हुंदिआं कहिंदे ने मेरे मन भज। भज दा अर्थ है भजन करना, बंदगी करनी, इबादत करनी, चेते करना, उहनूं आपां भज कहिंदे आ। एक भज दा अर्थ हुंदा भजना, किसी चीज तो भजना। इत्थे भज शब्द जिहड़ा है वह भजन तो बनिया है, जाने कि उहदी इबादत करनी, उहनूं चेते करना। ते गुरु रामदास महाराज अपने मन नूं मुखातब हो के कहिंदे ने भी मेरे मन भज राम नाम। वह रमिया होया जिहड़ा रब है उहदे नाम नूं चेते रखिया कर। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ? ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ

जहां पसरैपा सार संत प्रताप दो पाकाया पे तनी उनकी शोभा उन्नह बनी आपै कौतक करे आनंद चोज आपै रस भोगन निरजोग जिस पावै तिसे आपन नाए लावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेशुमार यथा अगणते।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरों गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस्य नित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, सार संग अगन सागर तरो। हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजया नंद, सात संग पज परमानंद। नरक नवारे उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित मो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक सार के बचन, अमोलीक लाल ए रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक कहाँ निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लगा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजय, सुन सुनी अनंत करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। चरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभया मिलाए। मिट गए बैर भई सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भये गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभु तारी, नानक निभही खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन खार चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टि। ताहि पल तिस जन कै मुख भने, गुर नानक नाम बचन मन सुने। एह निधान जपै मन कोय, सब जुग में ता की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्त कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए।

आनंद मंगल सुख पाए, संतो राम नाम निस्तरीय, उठत बैठत हर हर त्याई, अंदन सुकिरत करिय, सुख टल गुर सेवी, एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम वाहिगुरु साहब जी सोरठ महला पंजवा कर दूजा, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे, पावक सागर था लहर में तारो तारन हारे, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे, पावक सागर था लहर में तारो तारन हारे, माधो तू ठाकर सिर मोरा, इया हुआ तुहारो तोरा रहाओ, किते को मेरे समाने करण हार तिन जाने, तू दाता मांगण को सगली दान दे प्रापाने, खिन में अवर खिन में अवरा, अचर्य चलत तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो, ऊचो अगम अपारे, साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद पे आप एकत ही नानक,

तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पिया पेगती नानक प्रताप पुरख निर्बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जी सतगुरु की पार बख्श रहमत होई है। दरों करों वरसाए मल्ली परिवार को सतगुरु ने बच्ची की दात बख्शिश की है और बच्ची जीवन कौर ने जन्म लिया शुकराने वजो परिवार की चढ़ती कला दी बच्चों की चढ़ती कला दी परिवार वालों गुरु के चरण संगत के चरण प्रसन्न किए गए। अज के समुचे समागम की सेवा ले गई है कीर्तन कथा सुखमणी साहब के पाठ उपरंत गुरु चरणों में अरदास बेनती हुई है। सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्श के परिवार नूं बच्चों नूं ते सब नूं शीस बख्श की जो आप श्रद्धा ने सरवण किए ने। माधो तू ठाकर सिर मेरा दाता तू मेरे सिर का मालिक है। इं उं तवारो तोरा इत्थे आने वाले समय में सानू तेरा ही आसरा तेरा ही सारा। और गुरु ने बड़ी कृपा की कि माता दे गर्भ दे विच जिवें तू दाता साडी प्रतपालना की मात कर मैं आपन सिमरत तैं तुम राखना रे। तू बड़ी कृपा की साडे ते सानू माता दे उदर दे विच अपने चरणां नाल जोड़ के साडे ते कृपा की है। पाव सागर था लैर मैं तारो तार आ संसार दे विच वी गुरम प्यारो अगन दी जल चल रही है पापां दी वकारां दी क्योंकि एक जठर दी अग है जिथे बच्चे का जन्म हुंदा उथे मालिक अपना हाथ दे के रखता। इथे भी गुरम पैरो काम दियां क्रोध दियां लोभ दियां मोह दियां हंकार दियां त्रिशना दी अग है। सतगुरु कहिंदा दाता इथे भी मेरा ते कृपा रख के मैनू मेरा बचा कर दी मैनू अपने चरणा नाल जोड़ी। कीते को मेरे सवाने करण हार तिन जाने दाता तेरा सब कुछ देता तेरे बख्शा ने तेरिया ते सारी सृष्टि तेरे को मंग रही है तू सारिया ते बख्शा करदा सारिया ते बख्शा खिन मैं अवर खिन मैं अवरा। अच्छा कड़ी जो दी तू कुछ कर देना तेरे कौतक अचरज दे साध संग जो तुम्हें मिलायो जो तू सदगत बख्शी मेरे

प्रभु की में आ रहा हो मन तन रव रह हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दुख दुष्ट सब हुए खया गुण अवगण प्रभु कछ ना विचारियो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ा अचुत अविनाशी नानक उजरे हार की जया। मिलावल महला पंजवा बिन पै भगती तन कैसे करहु अनग्रह पत तो राता सुवान जैसे औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे सरन दुख भंजन प्रा पुरख नरंजन साधु संगत रवण जैसे

मन बहुत करैया आसा आस करें नहीं बुझे गुर के शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गवन करैया प्रव पर भवन कर बुझे नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे मन मंगे रिद सिद्ध चिटक चिटकैया तृप्त।

भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया।

अमावस्या चंद गुप्त गैनार मूजा हो ज्ञानी शब्द विचार सस्यार गगन ज्योत तहलोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसे सो तिस ही माहे मन मुख भूले आवह जाहे घर दर थाप थिर थान सुहावे आप पछाण जा सतगुर पावै।

सतगुर सेवे करनी सारी दर सचे सचे विचारी तित्ती वार सब शब्द सुहाए गुर सतगुर सेविता फल पाए तित्ती वार सब आवह जाहे गुर शब्द न चल सदा सच समाहे तित्ती वार जाता जा सच राते बिन नावै सब परमहे काचे मन मुख मरहे मर विगुती जाहे एक ना चित है दूजे लुपाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द को पाए पार आप पाए पावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते पेख

जिया अंदर तू जिया मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे पेख भवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे भिन्नड़ी रैन भली दिन सहाय रामा।

Y सूर्य किरण मिले जल जल का हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम।

सुरत मत नाही केश ज्ञान जाप ताप सीली धर्म किशन जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अबर ना कोई भूल है चूका प्रभ तेरे रहा और रिद ना बुद्ध न सिद्ध प्रगाह विख व्याद में गा के गाम बास करण हर मेरे प्रभ एक ने नाम तेरे की मन में टेक संसन जीव मन विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगणत जी का दाता जिसे जनावत ने तुम जाता जो उपाय जो पायो तिस तेरी आस सहल अराधे प्रगुण तास नानक दास तेरा कुरबान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान नवकली महला पंजवा राखण हर दयाल कोट पाव खंडे निमख ख्याल सगल अराध जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंद।

कोट जन्म के बिन से पाप हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन बसे महाविकार तम ते सब नसे गोपाल को जस गाओ प्राणी कथ कथा साची प्रपूरन ज्योति ज्योत समानी रहाओ तृष्णा भूख सब नसी संत प्रसाद जपया अविनासी रहन दिन प्रभ सेवक मानी हर मिलने की है निशानी मिटे जंजाल हुए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल वरा पुरबला करम बन अहया हर के गुण नित रसना गया हर के संसदा प्रवान संत जन मस्तक निशान दास की ऋण पाए जे कोय नानक ते की परम गत हुए राम कली महला पंजवा दर्शन को जाइए कुरबान चरण कमल हृदय तर ध्यान सातुर संतन के मस्तक लाए हे जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए हे जिस पेटद मिटे अभिमान पार ब्रह्म सब नदरी आवाय कर कृपा पूरन भगवान रहो गुर की कीरत जपिया हर नाव गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मन गुर बचनी समसा सुख दुख सदन व्यापे तुसना भूख मन संतोप गोबिंद गुर गाजे जाप गोबिंद पढ़ दे सब काजे गुर परमेश्वर एक गुर गोवा गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शंद गुर चरणी जाका मन लग नानक दास ते पूरन भग राम कली महला पंजवा किस प्रभास बिचरे पवन मूड मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गातनी जान पंच बटवारे से मीत कर मन है सो कर सेव जित उदर मीत गुण गोबिंद रवि है दिन रति सत्संग कर मन की प्रीत रहा जन्म बेहनो अहंकार बाद तृप्त न आवै बिख्या साध परमत परमत महा दुख पा त्रिन जाय दुत्र माया काम न आवै सो कार कमाव आबि जप ही खावै राखण को दूसर नहीं को तो निसर जो कृपा होए पतत प्रीत प्रभ तेरो नाम अपने दास को कीजै दान जानी संत की मित राय लोक सुख पा नहीं भेट धर्म राया कर कृपा प्रगत कर बेरी सन गही नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजवा यह लोक सुख पा नहीं भेट धर्म राह दुर्गे सुभावंत फण गर्भ नहीं बसंत जानी संत की मित राय कर कृपा दीनों कहर नामा पूर्व संजोग मिलाई रहा गुर के चरण चेत लागा तन तन संजोग सुपगा तन तन संजोग सुपगा तुरकी है सतगी दूर लागी मेरे माथे खिलबिख दुख सगले मेरे लाथे सतगी सटैल कमानी तब होए मन शुद्ध प्राणी जन का सफल दर्श डीठा नाम प्रभु का घट घट बूठा मिटाने सब काल कलेश तिस्ते उपजे तिस मह प्रवेश प्रगटे अनूप गोबिंद प्रभ पूरे नानक बख्शेंद राम कली महला पंजों गौ को चार सारदूल कौडी कलक महुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाल अपना प्रभ नदर ने हले कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे वरण साको बहु गुण तेरे रहाओ दीस तमास न खाए बिलाई महा कशाब छुरी सट पाई करण हर पर हृदय बूठा फाथी मछली का जाला टूटा सूके काष्ट हरे चलूल फूले उचे थाल फूले कमल अनूप अगन वारी सतगुरदेव सेवक अपनी लायो सेव अकिरत कनाका करे उद्धार प्रभ मेरा है सदा दहार संत जनक ससहाय चरण कमल नानक सुख पाई सेवक अपनी लायो कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे वरण सको भगवन तुर रिस्तमासन खाए बलाई महाकसाब श्री सटपाई करण हर फिर दे बूठा फाथी मछली का जाला टूटा सूखे काष्ट रे चलूल फूचे ऊंचे थल फूले कमल अनूप अगन बारी सदगुर देव सेवक अपनी लायो सेव किरत कनाक कर उधार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जनक सहाय चरण कमल नानक शरणाई राम कली महला पंजवा पंज सिंह राखे प्रभ मार दस बघ्याड़ी लई निवार तीन वर्गी चुकी घेर साह संग चूके फेर सिमर सिमर जीवा गोबिंद कर कृपा रखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शेंद रहाओ ताज गैतर पाप सुमेर जप जम नाम पूजे प्रभ फेर आंद्र